जाई को तो जैसे इच को तो जैसे और जाई को तो जैसे तू को तो जैसे और जाई को तो जैसे इच को तो जैसे और जाई को तो जैसे तू को तो जैसे बात बात मावात मावात नीलो ची जो को ओपे पापे पापे लोले मो लोले नी मो फेटो फेटो नी mo fe mo fe mo fe lo le mo fe lo le mo ni mo fe oni si oni mo ba ba si ba ba oni ba ba si ba ra pa la ba ra pa lo mo ra pa lo mo ra pa mo fe mo fe mo fe mo fe